हम आशिक है हमारा क्या, है हमारा क्या, हम आशिक हैं। और आशिक भी ऐसा आशिक होगा ना तुम्हारा ओ साहिबा।

0: चापकी पा।
1: आई मिनी,
0: तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
1: आज पार्टी करने आया है।
0: दारू पीते हो?
1: ना जी ना, एक दो कॉक पी के चले जाएंगे।
0: हाथ को, हाथ को। हार्डकोर, उन्हें क्यों जाने दिया?
2: क्योंकि वो हार्डकोर है।
0: मैं भी तो सॉफ्टकोर हूँ।

सड़कां ते आ गए नी, दैट इज द न्यूएस्ट वन बाय बब्बू बान कॉल्ड रिश्तेदार. बिफोर दैट प्रियंका अटवाल विद द सॉन्ग सजना विद सजना, एंड एट द बिगिनिंग यू हर्ड अ सॉन्ग बाय हंसराज हंस ओदियां खेडां. लो चलिए अगले गीत वाल. दिस इज लाभ हियर्स लेटेस्ट रिक्रिएशन, इट्स कॉल्ड दल्ले पार्ट टू. Here it is, right here on Sartal.

दुनिया ने दिल तोड़ा पर महबूब ने दिल जोड़ा, मैं टूट के गिरता रहा पर उसने फिर से दिल जोड़ा। अब डरे कहीं वो भी ना छोड़ जाए मुझे, दुनिया से नहीं बस इस डर से दिल जोड़ा। कमाल है जो टूट कर भी शिकवा ना कर सका, उसकी मोहब्बत ने बस आखिरी दिल जोड़ा।